0: जीतपुर वाली यह साल तो निश्चिंत हो गवा गए।
1: हाँ तब परसलिए याद करो तो जू डराए लागत है। पानी जब बरसत रहा तब इतना आनंद से कहाँ बैठे मिलत रहा। सोचो तुम नदी किनारे के घर पानी पड़े लागे कि जू घबराए लागत रहा।
0: हाँ तो भले सही समय पर नदी के किनारे से सुरक्षित जगह पर चल गवा।
2: बरसात के मौसम में बाढ़ के खतरा ज्यादा होत है, यही नाते बाढ़ से बचे खरती पहले से तैयारी और सावधानी अपनावा जाए। नदी नारा में पानी अगर बहा है तो सतर्क हो जावा जाए। एम्बुलेंस, सुरक्षा निकाय, स्वयं सेविका सबके संपर्क करे, सूची तैयार पारा जाए। एकाएक जरूरत पड़े वाला सर सामान के झोला तैयार रखा जाए। सतवे बरसात के समय में रोग लागे जोखिम ज्यादा हो नाते पानी उबाल के पिया जाए, सर सफाई में ध्यान दिया जाए।
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल और भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप बांके के साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहा विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता और सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के खातिर जारी संदेश।
4: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ बर्दियाको आवाज रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज।

नहीं बड़ी बड़ी दिया होती है ऐसी बड़ी की पीछे तो करती है ऐसे कैसे घूमे नहीं बनता तो देखा तुझे फसलों में अच्छे से तो गए जो आगे बने लगे अब कर

बीबी मुझको पता है तेरा मन है बड़ा, तभी फ्लोर पे तेरी वेट में हूँ खड़ा। ऐसे बैठे बैठे तू शोल्डर ना हिला, थोड़ा पैर उठा सानू नच के वगा।

प्रिय मैगर का बिलाङ्क्र जय मसी व नमस्कार म आफ्नो हुकलके सामु फे महात्मा प्रसाद चौधरी आगे लाटो आज हाम्रा परमेश्वर कना शीर्षकमा वचन हेर जाइती जिन हाम्रा भाग एक का रूपमा हाम्रो हेर्ने बाटी कविला हुँ आज मैं परमेश्वर का बारेमा बात बटाइ चाहटु जब मैं परमेश्वर कै ककट हुँ मैंने आकार अर्थ थाहा बा यी विश्ववाद का बारेमा ध्यार जना बात बटोइ था यी विश्ववाद कलक अपना चाह जुन भगवानमा विश्वास गर सेकबी कना हो यी चाहिँ नै हुन बात पक्कै हो जब क्रिस्चियन मण्डली परमेश्वर का बारेमा बात बटोयत कलसे वहाँ एक सत्य परमेश्वर का बात के लिख हुई था जहाँ हरेक मेरिक देवी देवता के बारेमा नै बटाइ थियो ग्रीक रोमी और आकुरस्ता ऐतिहासिक देश देवी देवता बारेमा बात बटवाए यी पोलिथेस्टिक विचारका बारेमा सायद आफ्नो सुनल हुई यी कलक्का हो कलसे यी विचारका मनै हुक्रा ढ्यार देवी देवता बाटाकना विश्वास गर्छ हुक्रा विश्वास गर्छ कि शान्तिक देवता लडाइक देवता पानीक देवता बाटाकना बाटा निक्र विश्वास गर्छ तर आज फे असिन मेरो ढ्यार धर्ममा यहाँ आस्थामा मनै हुक्रा बाटा हुक्रा विश्वास गर्छ कि उहाँ हरेक मेरिक देवी देवता हुक्रा बाटा जब प्रेत पावल रोममा गइला उहाँ ढ्यार देवी देवता नक मूर्ति बनाएल रह ओ हुक रह ओ मूर्तिक आराधना कर ओ मूर्ति फे एक मूर्तिक नाउ नै रह र फे हुक्रा पूजा कर ताकि यी देवी देवता अथवा यी देवता नारिसाएका गहुँ र ऊ काम करती रह ज्याकर नाउ नै रह र फे हुक्रा पूजा कर ताकि ऊ देवता चाहिँ मान ऊ देवताक मान सम्मान करक अनि ज्याकर नाउ चाहिँ नाउ नै रहल देवता कै कर हुक्रा एक ठो फे नै छोड़कर पूजा कैना काम कर ओ खोजत रह उहाँ सुसमाचारमा पावल यह बाठा लेकर हुक्रा सुसमाचार सुनेला यी नाउ नै रहल देवताक बारेमा आज मै तुहान बटाए चाहतु गई का पावल रोममा सुसमाचार सुने छ आजिक दिनमा का हुइता कोही कहत अपना सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा विश्वास गर याकर अर्थ चाहिँ एक परमेश्वर कना हो यी सारा संसारमा एक परमेश्वर के लिए बाटा खाना बा अपना कहत हुई जब अपना यहुदी धर्ममा हेरबी कलस्य हुक्रा एक सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा विश्वास गर्था इस्लाममा फे हुक्रा सर्वशक्तिमान एक परमेश्वर बाटा कहेका कथा तर विश्वासी हुक्रा अथवा क्रिश्चियन हुक्रा एक परमेश्वरमा विश्वास गर्था ओसे ध्यार मनै हुक्रा कथा उ तीनौ एक हुई का करे कि यी तीनौ विश्वासी हुक्रा इस्लाम और यहुदी चाहिँ एक परमेश्वर हे मान्था यी चाहिँ मजा हुइन रह कि हाम्रा सब एक परमेश्वर हे मान्छी तर वसिन बिल्कुल नै हो यहुदी धर्मक मनै हुक्रा येशु हा ओ येशु ईश्वरत्व हाँ स्वीकार नहीं करता हुक्रा सोचता था कि मसीहा ऐटी बाट ओहर से हुक्रा येशु है आशाकल मसीहा रूप में स्वीकार नहीं करता ओहर से हुक्रा येशु है सत्य परमेश्वर में ओ परमेश्वर का रूप में स्वीकार नहीं करता हुक्रा पवित्र त्रिकत्व में विश्वास नहीं करता हमारा विश्वासी अथवा क्रिश्चियन मन हुक्रा विश्वास कैलक परमेश्वर में हुक्रा विश्वास आराधना नहीं करता इस्लाम धर्म मा फरक नाउ बा ओ क्रिश्चियन मा फरक फरक नाउ परमेश्वर का बा हुक्रा अपन भगवान है अल्लाह कहे का कथा हुक्रा हमन से पूरे रूप में फरक चाहक अध्ययन करना बात ओ विश्वास का बात पूरे फरक रहा कबिला हुक्रा जब कोई अपना थ्याय हो कही कि अपन परमेश्वर है तुरा चाह जा नाउ दे वही से कोनो फरक नहीं पड़ी और जुन मेरी तरीका से हुक्रा सोचता ई चाहिए आत्मिक बात हो हुकन कही अपना जुन परमेश्वर में विश्वास करती वो अपने ही कसी का मुक्ति दिया जायता ई बात ले चाहिए हुकन पुगी कबिला हुकरा ये चाहिए विश्वास बात का रूप में इना चीना सेक जाए एकर मतलब हरेक जे मुक्ति पाई सेकी तर वाकर ला कुछ न कुछ चादम वो अपन आस्था धरा परी अपना ऊह अनुसार जीवन यापन करा परी वो अपना मुक्ति पाई भी का करे कि परमेश्वर अपने है मुक्ति लागे येशु में विश्वास कर ही परी कई का नहीं कही कई का हिकर विचार करता तर परमेश्वर में अपन मजा काम से स्वर्ग पैम स्वर्ग है कामक लाग अथवा मैं स्वर्ग कमा का कमाइम कना मनेनक लाग स्वर्ग कब्बू फे नहीं हो का करे कि मनेनक बल ताका तो धन संपत्ति से स्वर्ग मिलना चाच फे नहीं हो जत्रा मजा काम करला से फे मनेनक संघर्ष ले हुकर अपन पाप है क्षमा कर नहीं सके ही पाप है क्षमा कर सकना एक कठो किली को पाए बा वो येशु मा जे हमार पापक लाग क्रूस मजा का मूला वो हमार लाग मुक्ति डगर लेकर आईला वहां द्वारा किली हमार पाप क्षमा हुई और वहां द्वारा किली हमारा मुक्ति उपहार हमारा पाई सके ये बात हम सब जे बुझी करा मेरी तरीका से मई पाछा आकर बूंदा बटाई जब धर्म शास्त्र परमेश्वर का बुद्धि बारे में बटाए जे चाहिँ सत्य परमेश्वर हुई था पवित्र शास्त्र में दुई मेरिक परमेश्वर का बुद्धि बारे में बटाइल बा पहिल चाहिँ प्राकृतिक परमेश्वरीय बुद्धि जुन बुद्धि हरेक मनैया है परमेश्वर देला बाता
चाहे वो विश्वासी रह चाहे नहीं रह, जब वहां में विश्वास नहीं करल मने हुकन कभी कला से परमेश्वर खतरा मजा से संसार है और संसार बनेला बाटा हरेक चाह ठीक ठीक ठाव में बा मने हो कही का कठा। जब अन्न बाली है पानी का आवश्यकता रठस पानी आए जंगल में वो घर पालुआ जनावर है हरेक ठाव में बैठना फरक फरक मेरी जीव जंतु हुकरा परमेश्वर बनेला बाटा परमेश्वर जीव जंतु हुकरा जीवन चक्र बनेला बाटा हुकरा एक औरक में निर्भर बाटा हिसाब चाच बनाए देख का हमरा परमेश्वर का बुद्धि के बारे में डांच बात जाना सकती कबीला हुकरा परमेश्वर का प्राकृतिक बुद्धि से अपना उद्धार पाए नहीं सक भी क्या करे की अपना परमेश्वर का बारे में जानने के लिए नहीं हुई ये बुद्धि अपने यीशु के बारे में नहीं बताई रुखो है जमा फारा लागल देख भी वो रुखो कसी का बरहल कसी का वट्रा भार हुई विचार करी परमेश्वर के बारे में वहाँ शक्ति के बारे में अपना वहाँ कैलक सृष्टि है हेर का जाना सही परमेश्वर मन हुकन छुटकारा देना बात वही सब बात परमेश्वर के बारे में अपने नहीं बताए यह प्राकृतिक बुद्धि से झूठा शिक्षा इलाक हो क्या करे की हुकर सोचत की परमेश्वर का चरित्र के बारे में हुकन ठहा बाटिन और बुद्धिमान और शक्तिशाली बाट वहाँ सर्व शक्तिमान सामर्थ्यवान बाट ये सब बात जानकर अपना मुक्ति के बारे में ठहा पाइन डगर नहीं हो क्या करे की परमेश्वर वहाँ वचन से फिर वहाँ है प्रकटीकरण करता और ये चाहे वहाँ है जन्म दूसरो तरीका हो वाकर लाग वहाँ हमन वहाँ वचन धर्म शास्त्र के रूप में देला बाट ध्यान मन हुकर बाइबल ही है एक तो ऐतिहासिक पुस्तक हो गई कथा हुकरा कथा बाइबल और धर्म से और धर्म ग्रंथ से मिलत कबीला हुकरा ओसी नहीं हो बाइबल कौन धर्म धर्म ग्रंथ से नहीं मिलत ओ ये चाहे जब अपना पहर भी अपना ठहा कर भी की और धर्म ग्रंथ से खतरा फरक बाइबल बा का बा ये धर्म शास्त्र 1600 वर्ष लगा कर लिखल बा जी हाँ एक विशेष समूह बैठ का एक्का ठाव में बनेला ये बाइबल 36 जना लेखक हुकरा फरक फरक ठाव में फरक फरक समय में परमेश्वर द्वारा प्रकाश पैलक अनुसार कहीं क्रम के लिखोट हो जहाँ हमारे देखती की 66 तो पुस्तक बाइबल में बा अने 66 पुस्तक का संगालो पवित्र बाइबल हो या भीतर 66 पुस्तक के रूप में यहाँ वर्गीकरण कैल बा ये पुस्तक एक औरक में मतभेद नहीं हो सब चाहे एक औरक परिपूरक बाट इमेरिक अचम्मक पुस्तक के रूप में हमारा बाइबल है देखती ये लिखना में परमेश्वर लेखक हुकन अगुवाई करला जोन ध्यार भाषा हुई थी ध्यार पुस्तक हुई थी आज हमारे भाषा में फिर बाइबल आयल बा परमेश्वर का सत्य वचन हो जोन वचन में परमेश्वर का शक्ति बा ये वचन मन रूपांतरण करत जीवन के रूपांतरण बाइबल से बिठा जोन शक्ति मन हुकन परमेश्वर मानत ओ हुकरा वहाँ है अपन व्यक्तिगत प्रभु के रूप में स्वीकार कर सकता और से कबीला हुकरा ये विश्वास बाद है छोड़ दे एकदम साधारण मेरे से परमेश्वर मा मने हुकन आनी ये चाहे एकदम असल बा किनो बचाइना काम मजा हो जे सत्य परमेश्वर का आराधना करी अपना थे ध्यार निश्चयता हुई पर था अपना थे झूठा देवता है अपना वाकर सेवा अपन हृदय से कराती वाकर लाग अपना मरी मेता थी वही ना भेटी चढ़ाई थी अपना विचार मा वो अपना बचाई सकी अपना को डार करा सकी कना अपनक मा विश्वास आयता ओकर सेवा करती क्रम में कल से कहा सच्चाई को एक ठो प्रश्न मैं पूछक चाहत हूँ कहा वो विश्वास वो देवटक में करलक विश्वास अपना है उद्धार कर सकी तर ये भी वो झूठा देवटा हो कल से अपना है बचाई सकना ओकर में शक्ति नहीं हुई थी ओ चाहे एकदम महत्वपूर्ण हो कि यदि सत्य परमेश्वर है नहीं जानल रवि कला से कहा हुई और से संसार का हरेक विश्वासी होकर वहाँ गवाही बनत के परमेश्वर चाहता।

0: प्रिय मैगर कविला हुँदा आजिक कार्यक्रम सुनके आफ्नै हिन कसिन लागल आशा बा पक्कै छन् आशिषमय लागल हुई। यदि यी कार्यक्रम के लाग अपने के छन् कौनो प्रश्न जिज्ञासा हो सुझाव कलेसे वस्तहाका बाइबल सम्बन्धी कौनो पुस्तक पुस्तिका पाएका ठुबी कलेसे एकदम ढुकचुक निमानका पत्रचार गरी हाम्रा ठेगाना बा कार्यक्रम मुक्ति सन्देश TWR नेपाल GPO बक्स नम्बर 8975 EPC 2561 काठमाडौँ नेपाल। SMS के लाग मोबाइल नम्बर NTC लाग 9847035679 ओ NCL के लाग 9813300690 ओस्ताके फोन नम्बर बा 01559101053। यदि अनलाइन मा फेन रेडियो सुन्न चाहथिबी कहलेसे हमार वेबसाइट हो www.twrnepal.com म अपना सुन सक्दी।
1: नमस्कार तपाईँ

How dare you? खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की, किस हक से तुमने मुझे छुआ? तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पे। क्यों बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हो? दूर रहो मुझसे।